0: मेगाहर्ट्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ट्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
2: टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
4: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
5: Back to back. Back to back.
6: In this song on
5: Stay tuned.

0: उपलब्ध होए खातिर आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतान प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर नेपाल का अपने क्यूआर।
1: हाय के गर्ने होला अब सुगर पनि बढ्दै छ थायराइड को समस्या अझ छुट्टै छ कति ठाउँमा देखाए तर भएन
2: ए तिमी यति चिन्तित किन के भयो फेरि
1: के भने नि डाक्टरले मलाई हार्मोनको समस्या छ भन्नुभयो अनि त्यसैमा बच्चा नहुँदा मलाई

वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 9805532568।

0: Celebonia.
1: Extreme energy drink.
2: व्यावसायिक कृषि पद्धति अपनाएकला किसान हुकरन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तालिम केन्द्र खजुरा बाँके के विशेष अनुरोध
3: कृषि क्षेत्र म व्यावसायिक पद्धति अपनाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी हो बनाई कृषि पेशा है मर्यादित बनाए उद्यमशीलता विकास कई के रोजगारी सृजना करी हो कराई
2: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई
3: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू गरी
2: सफल उद्यमी बनियो व्यवसाय हे निरन्तरता दि आगे बढाई हो बढाइक लगाई कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निशेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकारिक लाग प्रयास करी वो कराई
3: थप आवश्यक सर सलाह वो जानकारी के लाग लगभग संघीय वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करे लाग अनुरोध बा
2: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तालिम केन्द्र खजुरा बाँके
4: लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभीजको फ्री एक्सेस पनि
5: हो र हो नि एनसेलमा अब मात्र 799 मै सबै अनलिमिटेड
6: ओहो आजै यो सुपर भ्यालु प्याक *123# डायल गरी वा एनसेल एपमा गई लिनुहोस् एनसेल नेपालकै लागि
7: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन् खुसीको खबर कहिले सुनाउने भनेर
8: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन
7: कति अस्पताल धायौ कति उपचार गरायौ अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ
8: होइन हामीसँग अझै आशा छ मैले शुभश्री आईवीएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ
9: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आईवीएफ क्लिनिक अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित
7: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो
8: धन्यवाद शुभश्री आईवीएफ हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा
9: थप जानकारीका लागि शुभश्री आईवीएफ क्लिनिक सोल्टीमोड काठमाडौँ फोन नम्बर 98614169
10: यो कृष्ण सार एफएम
11: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज

आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।

होए खातिर आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।

0: Extreme energy drink.
1: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
2: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवानिवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ENT विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ENT कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको सातै दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 9850303479 र 9840821380।
3: ओहो, आज डाई नै मजा लागत हो। मजा से दवाई करेना कहटो।
4: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाइन। पश्चिम नेपालके अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यही कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगञ्जमा मिलत।
3: ए बात त ठिक कैलो, साच्ची कि अस्पतालमा का सुविधा मिलत त?
4: उहाँ त 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन ओ लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया, जरल घाव उपचार करना संगे NICU, PICU, ICU, हाईटेक अपरेशन थिएटर हो, सुरक्षित प्रसूति सेवा फे उहाँ पा जाइत। छोट बच्चा हो, भर्खर जन्मल बच्चन के सामान्य से लैके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे उहाँ कै जाइत।
3: ए ओसिनो कला से उहाँ जाई मन फे ढुक्क हुइना चाहल रह।
4: हो तो स्वास्थ्यक हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो। कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा। सम्पर्क नम्बर 081535717। कान्ति आरोग्य अस्पताल, अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा।
3: कान के समस्या बा उपचार कराइकला कहाँ लैजिना हो?
4: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्र मा जाइन। वहाँ त अनुभवी चिकित्सक को वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुई। ओतरकेल कहाँ हो? वहाँ तो लंबा समय से कान पकती रहना, जीर्ण रोग, काने ढुसी, कान खजोइना, कान कम सुनना, कान दम्मा हुइना बिरामीन के उपचार और परामर्श वो लंबा समय से कान पकती रहले कान के जालिम पाल परल कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कई के उपचार हुई। वाकर संगे कान कम सुनना विटामिन के लाग कान में लगाइना सस्ता व महंगा ढेर प्रकार के कान के मशीन विटामिन के रोजाई अनुसार के उपलब्ध फे करा जाए। जस्ते BTE, CIC, RIC जैसी मशीन फे वहाँ मिलत।
3: ए ओसिड हो कल से बुढ़ू हो वहाँ ले जाके उपचार करेले से वजह से सुनो से कही ता?
4: एकदम समय में उपचार करेले से उपचार संभव बा। बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98 84 20 697, 98 85 23 697 व 98 014 83 697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी।
5: एउटा राम्रो विद्यालयले केवल पढाइ मात्रै होइन बच्चाको भविष्य पनि बनाउँछ।
6: नेपालगञ्जको बीपी चोकमा अवस्थित GBN सेकेन्डरी स्कुल गुणस्तरीय शिक्षा, अनुशासित वातावरण र अनुभवी शिक्षकहरूको उत्कृष्ट संयोजन हो। यहाँ विद्यार्थीलाई पुस्तकको ज्ञानसँगै संस्कार, आत्मविश्वास र जिम्मेवार नागरिक बन्ने शिक्षा दिइन्छ। आधुनिक शिक्षण विधि र सुरक्षित वातावरणका कारण GBN अभिभावकहरूको पहिलो रोजाई बन्न सफल भएको छ।
5: यदि तपाई आफ्ना नानीहरूको उज्जवल भविष्यका लागि विश्वासिलो र उत्कृष्ट विद्यालय खोजिरहनु भएको छ भने आजै सम्पर्क गर्नुहोस् जीवीएन सेकेन्डरी स्कुल बिपी चोक नेपालगञ्ज।
6: शिक्षा र सफलताको पर्याय जीवीएन सेकेन्डरी स्कुल। सम्पर्क फोन नम्बर 081-531-570। के तपाईँ आफ्नो भविष्यलाई प्र्याक्टिकल एजुकेसनसँग जोड्न चाहनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने अरुणोदय बोर्डिङ हाई स्कुलमा अब कक्षा 11 होटल म्यानेजमेन्ट अध्ययनका लागि भर्ना खुलिसकेको छ। यहाँ विद्यार्थीहरूले केवल किताबबाट मात्र होइन व्यावहारिक अभ्यास मार्फत पनि सिक्ने अवसर पाउँछन्। मोडर्न किचन प्र्याक्टिकल, हस्पिटालिटी ट्रेनिङ, स्किल्ड टिचर्स एन्ड डिसिप्लिन्ड लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट अब एकै ठाउँमा।
5: आजको समयमा सर्टिफिकेट मात्र होइन स्किल पनि आवश्यक छ। आजको समयमा सर्टिफिकेट मात्र होइन स्किल पनि आवश्यक छ। त्यसैले अरुणोदयले विद्यार्थीलाई विश्व स्तरको प्र्याक्टिकल एजुकेसन प्रदान गर्दै आइरहेको छ।
6: यदि तपाईँ हस्पिटालिटी सेक्टरमा सफल करियर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै भर्ना सुनिश्चित गर्नुहोस्। सिट सीमित छन्। अरुणोदय बोर्डिङ हाई स्कुल, खजुराचार, बाँके। सम्पर्क नम्बर 081-560-143 र 98-580-20-819।
2: भर्ना खुल्यो।
6: होप इन्टरनेशनल एकेडेमीमा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा 11 भर्ना खुल्यो।
0: हजुर, कम्प्युटर व्यवस्थापन विज्ञान तथा होटल म्यानेजमेन्ट संकायमा नयाँ भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ।
6: नेपालगञ्जमा विगत 21 वर्षदेखि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको यस विद्यालयमा सुविधा सम्पन्न कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय तथा आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला, प्रोजेक्टर मार्फत अध्यापन हुने कक्षा कोठा र सेमिनार हलका साथै विद्यार्थीको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै छात्र छात्राका लागि सुरक्षित छात्रावास, जेनेरेटर तथा चिसो तातो पानीको व्यवस्था समेत छ।
7: फुटसल, क्रिकेट, भलिबल, बास्केटबल र ब्याडमिन्टन जस्ता खेल मैदानको व्यवस्था हुनुका साथै जेहेन्दार तथा योग्य विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था समेत गरिएको छ।
6: यहाँ यातायातको पनि व्यवस्था रहेको छ है।
7: होप इन्टरनेशनल एकेडेमी, गुणस्तरीय शिक्षाको भरपर्दो आधार।
6: थप जानकारीका लागि
7: सम्पर्क नम्बर 081-551-462, 98-580-24-462, 98-580-20-645। ठेगाना होटल रोयल बाँकेको पूर्वतिर, नेपालगञ्ज, बाँके।
3: खुसीके खबर, खुसीके खबर। हमार शहर नेपालगञ्जमा ढेर वर्षसे सेवा डेटी आयल नेपालगञ्ज नेसनल अस्पतालमा ढ्यार विशेषज्ञ डाक्टरनसे रोज दिन स्वास्थ्य सेवा डेटी आयल बा। यी अस्पतालम रोज दिन ढ्यार विशेषज्ञ डाक्टरनसे ओपीडी सेवा देनाके सँगे ढ्यार सेवा डेटी रलेक जानकारी कराइटी।
8: जस्तक सर्जरी के सक्कु उपचार, प्रसूति व स्त्री रोग के सक्कु उपचार, नसा व हड्डी रोग के सक्कु उपचार, मस्तिष्क व मानसिक रोग के सक्कु उपचार, छाला रोग के उपचार, नाक कान घाँटी रोग के सक्कु उपचार सेवा देती आइल बा।
3: ओस्तक सुगर, ब्लड प्रेसर, मुटु रोग, पेट, छाती, कलेजो सम्बन्धी सक्कु उपचार, पैथोलॉजी लैब सेवा, वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे ओ और सक्कु सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महीनक अंतिम शुक्रवार काठमाडौँ मेडिसिटी अस्पताल के सुगर ओ थायराइड रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराइटी।
8: नोट, ई अस्पतालम कार्यरत सक्कु डाक्टरन से हरेक महीनक अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जाँच में 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा। नेपालगञ्ज नेशनल अस्पताल, बीपी चोक, नेपालगञ्ज। सम्पर्क नम्बर 081-536-465, 98-239-80-665 ओ 98-482-80-465।

0: कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज कृष्णसार जसिन तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 1 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: Celebonia. Extreme energy drink.
1: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
2: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाओ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
1: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
2: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारे के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 9848206697 9858023697 और 9804483697।
1: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहां सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
3: भर्ना खुल्यो।
4: होप इंटरनेशनल एकेडमी मा नया शैक्षिक सत्र का लागि कक्षा 11 मा भर्ना खुल्यो।
2: हजुर, कंप्यूटर व्यवस्थापन विज्ञान तथा होटल मैनेजमेंट संकाय मा नया भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछु।
4: नेपालगंज मा विगत 21 वर्ष देखि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको यस विद्यालय मा सुविधा सम्पन्न कंप्यूटर ल्याब, पुस्तकालय तथा आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला, प्रोजेक्टर मार्फत अध्यापन हुने कक्षा कोठा र सेमिनार हलका साथै विद्यार्थीको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै छात्र छात्राका लागि सुरक्षित छात्रावास, जेनेरेटर तथा चिसो तातो पानीको व्यवस्था समेत छ।
3: फुटसल, क्रिकेट, भलिबल, बास्केटबल र ब्याडमिन्टन जस्ता खेल मैदानको व्यवस्था हुनुका साथै जेहेन्दार तथा योग्य विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था समेत गरिएको छ।
4: यहाँ यातायातको पनि व्यवस्था रहेको
3: होप इंटरनेशनल एकेडमी, गुणस्तरीय शिक्षा को भरपर्दो आधार।
4: थप जानकारी का लागि
3: संपर्क नंबर 081-551-462, 9580-24462, 9580-20645। ठेगाना होटल रोयल बांके को पूर्वतिर नेपालगंज बांके।
1: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
2: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो, एक साथ हैं तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाहा जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
2: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
1: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जांच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
2: संपर्क नंबर 081-536-465, 9249-80665 और 9842-80465।

0: खुल्यो खुल्यो खुल्यो
1: तपाईको आफ्नै सहर कोहलपुरमा टीवीएस शोरूम खुल्यो।
0: स्टाइल, पावर र भरोसा अब एकै ठाउँमा
1: कोहलपुरमै पाइन्छ। टीवीएस का नयाँ बाइक र स्कूटर, दमदार परफर्मेन्स र उत्कृष्ट माइलेज का साथ सेल्फ सर्भिस र स्पेयर्स, सबै सुविधा एउटै छानामुनि, साथमा फाइनान्सको सुविधा पनि।
0: आजै आउनुहोस् नेपाल अटो पार्ट्स एन्ड सप्लायर्स, कोहलपुर 11 बाँके।
1: हजुर, नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा। सम्पर्क नम्बर 98125 26 711 र 98 20 18 37 86। नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा।
2: भैया, बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं। कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
3: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे, बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
2: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया?
3: सुनो, हुआ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
4: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नामदर्ता कहके तहे दिल हुआ जाए।
3: मेडिकेयर क्लिनिक, नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11, बीपी चौक के नेरेन, उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ। संपर्क नंबर 97649 11786, 98224 92377।
5: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक, मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
6: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो। सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन्, खुसीको खबर कहिले सुनाउने भनेर।
7: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ, तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन।
6: कति अस्पताल धायौ, कति उपचार गरायौ, अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
7: होइन, हामीसँग अझै आशा छ। मैले शुभश्री आइबिएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु, जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ।
8: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आइबिएफ क्लिनिक, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
6: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
7: धन्यवाद शुभश्री आइबिएफ, हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
8: थप जानकारीका लागि शुभश्री आइबिएफ क्लिनिक, सोल्टीमोड, काठमाडौँ। फोन नम्बर 98 61 14 16 99।
9: Back to back, back to back.
10: Hindi song
9: on. Stay tuned.

0: बीर डेंटल
1: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दांत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामिछाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
2: डाक्टर लामिछाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत आउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेँलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
1: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
2: फोन नम्बर 081-532-375। नेपालकै एकमात्र अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा। सन् 2016 डाक्टर लियोनार्ड लिङ्को फाउन्डेसनद्वारा बेस्ट डाक्टर ओआरद्वारा सम्मानित डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठ, एनएमसी 19393, बिडिएस दिल्ली, एफएजिसी मणिपाल, सर्टिफाइड इम्प्लान्ट एन्ड लेजर डेन्टिस्ट्री अमेरिका, सर्टिफाइड बोटक्स एन्ड फिलर स्पेसलिस्ट युरोप, एडभान्स सर्टिफिकेट इन जेनरल डेन्टिस्ट्री क्यानाडा, मिनी रेजिडेन्सी इन इन्डो डेन्टिक्स साउथ कोरिया, यी विभिन्न देशहरूमा अध्ययन गरेका डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठद्वारा उपचार गरिने अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा।
1: विशेषताहरू: दुखेको दाँतहरू जराबाट नै भरेर नदुख्ने बनाउने, बच्चाहरूको दुखेको दाँत जराबाट भर्ने, किरा लागेको दाँतलाई भर्ने, दाँत निकाल्ने, दाँतमा खोल लगाउने र दाँत नभएको ठाउँमा दाँत हाल्ने, मेटल क्राउन, बाङ्गो दाँतलाई तार बाँधेर सिधा गर्ने, वृद्ध अवस्थामा भएको बुढाबुढीको पुरा दाँतको सेट लगाउने, दाँतलाई प्रत्यारोपण गर्ने, चाउरी परेको अनुहारलाई राम्रो पार्ने, आँखा तल खाल्टो भएकोलाई भर्ने, सबै उपचारहरू दूरपिनबाट गरिने, डिजिटल एक्सरे सेवा।
3: सम्पर्क गणपति क्लिनिक, सुर्खेत रोड नेपालगंज, नर्सिङ होम नजिकै कुसुम पेट्रोल पम्पको सामुन्ने, पासङलाम रोड जाने बाटोमा। फोन नम्बर 081-531-366 र 98-085-49-451।
4: नेपालगञ्जका लागि सुपर स्पेशियालिटी विशेषज्ञ सेवा सहित आएको छ शिखर हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राली। हाम्रा सेवाहरू अनुभवी तथा विशेषज्ञ चिकित्सकको साथमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार र परामर्श, गम्भीर मृगौला रोग, डायलेसिस व्यवस्थापन, मृगौला संक्रमण, पत्थरीको निदान तथा उपचार, सुगर र उच्च रक्तचापको उपचार व्यवस्थापन तथा मृगौला प्रत्यारोपण तयारी र निगरानीको लागि पश्चिम नेपालमा एकमात्र डिएम नेफ्रोलोजिस्ट डाक्टर सौरभ सिंह हमाल। एपेन्डिक्स, पित्त थैली, आन्द्रा, कलेजो सम्बन्धी समस्याको उपचार तथा दूरबिनबाट अपरेसन सेवा, पेटको क्यान्सरको शल्यक्रिया र इन्डोस्कोपी कोलोनोस्कोपी जाँचका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट आउनुभएको एमसिएच ग्यास्ट्रो तथा हेपाटोबिलियरी सर्जन डाक्टर प्रदीप थापा। नवजात शिशु तथा बाल रोगको उपचारको लागि कान्ति बाल अस्पताल काठमाडौँमा पूर्व कार्यरत डाक्टर प्रतिमा खड्का। प्रसूति तथा स्त्री रोगको उपचार तथा शल्यक्रियाका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट आउनुभएकी डाक्टर प्रेरणा मल्लिक। साथै गुणस्तरीय प्रयोगशाला, इन्डोस्कोपी जाँच, इसिजी, इइजी, एनसिभी, एक्सरे तथा भिडियो एक्सरे जाँचका साथै सम्पूर्ण किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरूको विशेषज्ञ डाक्टरबाट गुणस्तरीय उपचार र परामर्शको सुविधा रहेको छ। सम्पर्क शिखर हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राली, भेरी अस्पताल अगाडि रामलीला मैदान जाने बाटो, रोयल क्याफे भएको बिल्डिङ, नेपालगञ्ज। सम्पर्क फोन नम्बर 081-530-220 र 98-41-586-979। 081-530-220 र 98-41-586-979।
5: हाय रे दीदिया, हमार टिहुनी बहुत पिरात है, बहुत दवाई कराए डाले, ना ही ठीक आत है।
6: सुनो बहनी, खुशी के खबर, कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जात है। और हुआ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिस, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रे और अंडकोश और मर्दांगनी के कमी हुए समस्या साथ कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जात है। और जानत हो हाथ गोड़ करिहा, रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाप, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथ प्लास्टर बांधा जात है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथ ऑपरेशन किया जात है। 2400 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
7: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता कंसल्टेंट सर्जन यूरो सर्जन जनरल कैंसर मूत्ररोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल मिश्रा कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हार्ट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ
6: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड सुर्खेत रोड आदर्श नगर नेपालगंज 10 बांके वन कार्यालय के नेरेन पेट्रोल पंप के पछुए संपर्क नंबर 081-531-5000
8: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाख को बीमा तिरेको सम्पूर्ण प्रीमियम फिर्ता
9: सूर्यज्योति सही प्लान
10: सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवन को लागी

0: Mania. Extreme energy drink.
1: अम्मा के दवाई करावे के है लेकिन समझ में नहीं आवत है कि कौन अस्पताल में ले जाए।
2: कांति आरोग्य अस्पताल है ये है, काहे चिंता लेत हो। पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
1: अच्छा, मनी अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है? तो
2: 2400 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर पर विधि से शल्यक्रिया, जलेक घाव के उपचार करे साथ NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेर के उपचार भी उपलब्ध है।
1: अस है तो अम्मा के यहाँ आजे लेके जाये थे कांति आरोग्य अस्पताल में। यहाँ
2: कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज, सब मेर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक ही छत के नीचे। संपर्क नंबर 081-535-717।
1: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
2: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाओ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतने कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। BTE, CIC, RIC जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
1: अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
2: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज 6 फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98-480-2697, 98-580-2397 और 98-014-83-697।
1: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
3: आज यार कहाँ भटकत हो?
1: आम और फल के बिरवा खरीदे खातिर परेशान हैं।
3: परेशान हो कोई बात नहीं है, प्रभात नर्सरी फार्म जोन भवनियापुर 14 महिया है, जिके प्रोपराइटर हैं प्रभात कुमार चौधरी और उनके फार्म के संपर्क स्थान है जिला हुलाक कार्यालय के पछाड़ी त्रिशक्ति मारवाड़ी मंदिर के सामने चौधरी सरकार बक्स पोली क्लिनिक है। हुआ तमामन मेर केर आम केर बिरवा दशहरी चौसा बम्बैया अमरपाली नीलम मलिका गुलाब खास और फल महिया लीची अमरूद कटहर केला अनार अंगूर नाशपति जस सब मेर केर आम और फल के बिरवा के संगे लकड़ी के खातिर सागवन जस बिरवा उचित दाम में यहाँ मिलत है। सैगर खरीदे पर यहाँ विशेष छूट के व्यवस्था है।
1: तब तो हम हो जाइबे और दूसरे को बताइबे।
3: संपर्क नंबर है 98-480-27916।
4: ब्राइटलैंड सेकेंडरी स्कूल में व्यवस्थापन तथा विज्ञान संकाय का लागी आवेदन खुला गरिएको छ।
5: हो, भर्ना खुल्यो। व्यवसाय बैंकिंग उद्यमशीलता होटल व्यवस्थापन वित्त कानून पर्यटन तथा कॉर्पोरेट नेतृत्व क्षेत्र में भविष्य निर्माण गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि सुनौलो अवसर।
4: व्यवसाय अध्ययन लेखाशास्त्र अर्थशास्त्र कम्प्युटर विज्ञान होटल व्यवस्थापन पर्यटन वित्त व्यवसाय गणित र सामान्य कानून
5: विज्ञान संकाय चिकित्सा इंजीनियरिंग प्रविधि अनुसन्धान स्वास्थ्य विज्ञान सूचना प्रविधि तथा विज्ञान सम्बन्धी क्षेत्रमा करियर बनाउन चाहने विद्यार्थीहरूका लागि
4: भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र जीव विज्ञान गणित र कम्प्युटर विज्ञान
5: विद्यार्थीहरूले आफ्नो करियर लक्ष्य अनुसार गणित जीव विज्ञान वा कम्प्युटर विज्ञान जस्ता विषय संयोजन छनोट गर्न पनि सक्नेछन्।
4: किन रोज्ने ब्राइटल्यान्ड?
5: हो, सबै विषयमा दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकहरू, केस स्टडी तथा परियोजनामूलक अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण,
4: पूर्ण दिवसीय कक्षा सञ्चालन, वित्तीय साक्षरता तथा उद्यमशीलता सिप विकास,
5: आधुनिक विज्ञान कम्प्युटर विज्ञान तथा होटल व्यवस्थापन प्रयोगशाला, उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरूसँग कार्यशाला,
4: नेतृत्व तथा व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम MBBS, BHM, BITM, BBA MBA, CA, MBS तथा अन्य व्यवस्थापन तथा विज्ञान क्षेत्रका लागि करियर परामर्श
5: उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको सुविधा अफिस खुल्ने समय बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म कक्षा सञ्चालन 2083 असार 1 गतेदेखि थप जानकारीका लागि
4: ब्राइटल्यान्ड सेकेन्डरी स्कुल पासाङ लामु रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क फोन नम्बर 081-532-607-530-602
6: Back to back.
7: In this song on
6: Stay tuned.

0: Extreme energy drink.
1: हरेक अभिभावकको सपना हुन्छ आफ्ना छोराछोरीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन्, सुरक्षित वातावरणमा सिकुन् र उज्जवल भविष्य निर्माण गरून्।
2: त्यही सपना साकार पार्दै आएको छ नेपालगञ्ज 18 बाँकेमा अवस्थित एक उत्कृष्ट शैक्षिक संस्था स्प्रिङडेल एकाडेमीले।
1: आधुनिक प्रविधि मैत्री कक्षा, अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट सिकाइ वातावरण, विज्ञान तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला, अतिरिक्त क्रियाकलाप र अनुशासित शैक्षिक संस्कार स्प्रिङडेल एकाडेमीको विशेषता हो।
2: ब्रिटिस काउन्सिलद्वारा प्रदान गरिएको इन्टरनेसनल स्कुल अवार्डले विद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शैक्षिक गुणस्तर प्रमाणित गरिसकेको छ। यहाँ पढाइसँगै व्यवहारिक ज्ञान र आत्मविश्वास पनि सिक्न पाइन्छ।
1: नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा 11 विज्ञान व्यवस्थापन र मानविकी संकायमा भर्ना खुला गरिएको छ।
2: सिट सीमित भएकाले आजै आफ्नो भर्ना सुनिश्चित गर्नुहोस्। गुणस्तरीय शिक्षा, सुरक्षित वातावरण र उज्जवल भविष्यको भरोसा स्प्रिङडेल एकाडेमी।
1: ठेगाना नेपालगञ्ज 18 बाँके। सम्पर्क फोन नम्बर 98582973।
3: भैया, बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं। कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
4: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे। बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
3: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया?
4: सुनो, हुआ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
2: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुल निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता करके तह दिल हुआ जाए।
4: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ। संपर्क नंबर 97649 11786, 98224 92377। सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक, मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
5: Back to back. Back to back.
6: In this song on
5: Stay tuned.

0: कुष्ठ रोग अभिशाप न होए, इके उपचारों भी संभव है। वही से कुष्ठ रोग के बारे में हम सब लोगन के यहाँ जानकारी पावे जरूरी है।
1: शरीर में यहाँ न खजवाए, छुए से जान न मिले, लाल और खर्रहा दाग दिखाए तो कुष्ठ रोग के शंका कई सका जाते है। असल लक्षण अपनक या तो दूसरे के यहाँ दिखाए तो जुड़तीन स्वास्थ्य संस्था में यहाँ जाए के जाँच करावा जाए। सब स्वास्थ्य संस्थान में यहाँ कुष्ठ रोग के दवाई निःशुल्क मिलत है।
0: समय में यहाँ उपचार यानी दवाई किए से कुष्ठ रोग पूर्ण रूप में यहाँ नीक होए के साथ है शारीरिक अपांगता होए से भी बची सका जात है।
1: जानकारी रहक चाहिए, कुष्ठ रोग बीमारी से प्रभावित और उनके परिवार के यहाँ भेदभाव करब कानूनी अपराध हो। साइनिंग अस्पताल INF नेपाल बांके द्वारा जनहित में जारी संदेश।

0: Extreme energy drink.
1: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
2: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवा निवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ईएनटी कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको सातै दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 98580-30479 र 98480-21380।
3: अम्मा के दवाई करावे के है लेकिन समझ में नहीं आवत है कि कौन अस्पताल में ले जाए।
4: कांति आरोग्य अस्पताल है ये है, काहे चिंता लेत हो। पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
3: अच्छा, मनी अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है? तो
4: 2400 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर पर विधि से शल्यक्रिया, जलेक घाव के उपचार करे साथ NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेर के उपचार भी उपलब्ध है।
3: अस है तो अम्मा के यहाँ आजे लेके जाये थे कांति आरोग्य अस्पताल में। यहाँ
4: कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज, सब मेर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक छत के नीचे। संपर्क नंबर 081535717।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतने कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
0: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
1: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो, एक साथ तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाह जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
1: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
0: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जांच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
1: संपर्क नंबर 081-536-465, 98239-80665 और 98482-80465।
2: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो। सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन्, खुसीको खबर कहिले सुनाउने भनेर।
3: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ, तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन।
2: कति अस्पताल धायौ, कति उपचार गरायौ, अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
3: होइन, हामीसँग अझै आशा छ। मैले शुभश्री आइबीएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु, जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ।
4: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आइबीएफ क्लिनिक, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
2: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
3: धन्यवाद शुभश्री आइबीएफ, हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
4: थप जानकारीका लागि शुभश्री आइबीएफ क्लिनिक, सोल्टीमोड, काठमाडौँ। फोन नम्बर 98-61-14-16-99।
5: Back to back, back to back. In this song on Stay tuned.
6: हम दिल के बुरे नहीं, बस एक खराबी है, आदत से नहीं हम।

0: आए रे दीदिया, हमार टिहुनी बहुत पिरात है, बहुत दवाई कराए डाले, नाई ठीक आते।
1: सुनो बहनी, खुशी के खबर, कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जात है। और हुआ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिस, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रे और अंडकोष और मर्दांगनी के कमी हुए समस्या साथ हैं कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जात है। और जानत हो हाथ गोड़ कर यहाँ रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाप, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथ हैं प्लास्टर बांधा जात है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथ हैं ऑपरेशन किया जात है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल कैंसर, मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ।
1: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर, नेपालगंज 10, बांके, वन कार्यालय के नेरेन, पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081-5531000।
3: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाख को बीमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता, सूर्य ज्योति सही प्लान,
4: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवन को लागि।
5: खुल्यो खुल्यो खुल्यो
6: तपाईको आफ्नै शहर कोहलपुरमा टीवीएस शोरूम खुल्यो।
5: स्टाइल, पावर र भरोसा अब एकै ठाउँमा
6: कोहलपुरमै पाइन्छ। टीवीएस का नयाँ बाइक र स्कूटर, दमदार पर्फर्मेन्स र उत्कृष्ट स्कूटर, दमदार पर्फर्मेन्स र उत्कृष्ट माइलेज।

0: पूर्ण गोपनीयता के साथ गर्भपतन, परिवार नियोजन के साधन, बच्चेदानी के मुंह और स्तन कैंसर के परीक्षण और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी परामर्श सेवा उपलब्ध है।
1: विशेष सुविधा
0: अब हरेक इतवार के दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदेश आचार्य के द्वारा विशेष परामर्श और उपचारों भी पावा जाए।
2: देर न कीन जाए, आजे स्वास्थ्य परामर्श लीन जाए। पता नेपालगंज उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 9 रामलीला रोड नापी शाखा के अगारी। फोन नंबर 081-530-598।
3: Back to back. Back to back.
4: In this song on
3: Stay tuned. Stay tuned.

0: खातिर आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतान प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर नेपाल का अपने क्यूआर।
1: व्यावसायिक कृषि पद्धति अपनाएक लाख किसान हुकरन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग और तालिम केन्द्र खजुरा बाँके के विशेष अनुरोध।
2: कृषि क्षेत्र में व्यावसायिक पद्धति अपनाई हो आय मूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी हो बनाई कृषि पेशा है मर्यादित बनाई उद्यमशीलता विकास कई के रोजगारी सृजना करी हो कराई।
1: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई
2: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू करी
1: सफल उद्यमी बनी हो व्यवसाय है निरन्तरता दी आगे बढ़ाई हो बढ़ाई लगाई कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता।

0: अनुसार अवलम्बन करी ओकराई एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निसेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कई के समन्वय सहकारिक लाग प्रयास करी वो कराई
1: थप आवश्यक सर सलाह वो जानकारी के लाग लगभग संघीय वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करेक लाग अनुरोध बा
0: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग और तालीम केन्द्र खजुरा बांके।
2: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
3: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी सीआईसी आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
2: अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
3: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 98480-2697 98580-2697 और 98014-83697।
2: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए। भैया बहुत दिन से महीनवारी में यहाँ गड़बड़ी सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं, कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
3: हम भी पहले गैस्ट्रिक बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे, बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए, वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
2: सही, वहाँ का सेवा मिलते है तो भैया?
3: सुनो, हुआ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक बवासीर हर्निया अपेंडिक्स थायराइड पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
4: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता कह के तह दिल हुआ जाए।
3: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ संपर्क नंबर 97649-11786 98224-92377।
5: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।

वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 9805523568।

उपलब्ध होए खातिर आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
2: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
2: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: होए खातिर आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतान प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर नेपाल का अपने क्यूआर।
1: खुल्यो
2: तपाईको आफ्नै शहर कोहलपुरमा टीवीएस शोरूम खुल्यो।
1: स्टाइल पावर र भरोसा अब एकै ठाउँमा
2: कोहलपुरमै पाइन्छ। टीवीएस का नयाँ बाइक र स्कूटर दमदार परफर्मेन्स र उत्कृष्ट माइलेज का साथ सेल्स सर्भिस र स्पेयर्स सबै सुविधा एउटै छानामुनि साथमा फाइनान्सको सुविधा पनि।
1: आजै आउनुहोस् नेपाल अटो पार्ट्स एन्ड सप्लायर्स कोहलपुर 11 बाँकी।
2: हजुर नेपाल अटो पार्ट्स भरोसाको यात्रा। सम्पर्क नम्बर 98125 26 711 र 98 20 18 37 86। नेपाल अटो पार्ट्स भरोसाको यात्रा।

0: toilet bunny, yeah. Extreme energy drink.
1: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुकरन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग ओ तालिम केन्द्र खजुरा बाँकेके विशेष अनुरोध
2: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी हो बनाई कृषि पेसा है मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कैके रोजगारी सृजना करी हो कराई
1: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई
2: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू गरी
1: सफल उद्यमी बनियो व्यवसाय हे निरन्तरता दि आगे बढाई हो बढाइक लगाई कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निसेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकारिक लाग प्रयास करी वो कराई
2: थप आवश्यक सरसल्लाह वो जानकारी के लाग लगभग संघे वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करेक लाग अनुरोध बा
1: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग और तालीम केन्द्र खजुरा बांके

0: böyle banyo.
1: Extreme energy drink.
2: व्यवसायिक कृषि पद्धति अपनावे के खातिर कृषक वर्ग के यहाँ कृषि व्यवसायिक प्रवर्धन सहयोग और तालीम केंद्र खजुरा बाके के विशेष अनुरोध।
3: कृषि क्षेत्र में यहाँ व्यवसायिक पद्धति अपनाए के आय मूलक व्यवसाय मार्फत आत्मनिर्भर बना जाए और बनावा जाए। कृषि पेशा के यहाँ मर्यादित बनावे उद्यमशील विकास कई के रोजगारी सृजना करा जाए करावा जाए। कृषि व्यवसाय में यहाँ तुलनात्मक विश्लेषण कई के आमदनी मूलक व्यवसाय छनौट करा जाए। खेती व्यवसाय के नियमित अभिलेख रख के विश्लेषण करक बानी बैठावा जाए। बाजार देख के मात्र उत्पादन योजना बनावा जाए। व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तैयार कई के कार्यान्वयन करा जाए। सफल उद्यमी बनो, व्यवसाय के यहाँ निरंतरता देव, विस्तार करा जाए करावा जाए। कृषि प्राविधिक विज्ञ लोगन से नियमित सर सलाह और सुझाव लीन जाए और वही अनुसार व्यवसाय कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करा जाए करावा जाए।
2: अकेले प्रयास से कृषि क्षेत्र में यहाँ व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में यहाँ कार्यान्वयन न कर सके कारण से हम लोग निजी और सरकारी सब सरोकार वाला लोग एकजुट हो के अपन अपन भूमिका निर्वाह संबंध में सहकार और प्रयास करा जाए करावा जाए।
3: तब आवश्यक सर सलाह और जानकारी के खातिर नेरे के संघीय तथा प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा उपलब्ध करावे वाले कार्यालय केंद्र प्रयोगशाला निर्देशनालय और स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में यहाँ संपर्क रखे खातिर अनुरोध करा जाते है। कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालीम केंद्र खजुरा बांके।
4: बहिनी हमार घर तो बढ़िया है, मने पुरान फर्नीचर तो घर के चमक हटाए दी जस लागत है।
5: हाँ तो दीदिया, अब तो घर के यहाँ नया परिवर्तन देहिन का परी जस लागत है। आरामदायी और मॉडर्न कुछ चाही।
4: अच्छा ऐसा तो चिंता काहे करी हो, स्टार फर्नीचर लैंड में यहाँ तो सब मिलत है।
5: साचू दीदिया, का का मिलत है हुआ?
4: सुनो बहिनी, स्टाइलदार सोफा, आरामदायी बेड, आकर्षण डाइनिंग टेबल, टीवी रैक, ऑफिस फर्नीचर, गलीचा कारपेट के साथ है घर सजावे वाला सब सामान चीज एक जगह में मिलत है।
5: और डिजाइन अपने इच्छा अनुसार बनाई के देते है?
4: काहे न बनाए दी बहनी, अपने चाहे जिस डिजाइन अनुसार भी बनावत है।
5: और मने डिलीवरी और फिटिंग?
4: अरे बहनी, बांके और बर्दिया जिला तक फ्री होम डिलीवरी है, इके साथ है फ्री फिटिंग सेवा तो बिल्कुल ही फ्री है।
6: आस है तो अब हमरो घर भी नवाजस बनावे है, स्टार फर्नीचर लैंड से शुरू कीन जाए।
5: हाँ दीदिया,
3: स्टार फर्नीचर लैंड शिक्षा कार्यालय के सामने बीपी चौक नेपालगंज, संपर्क नंबर 9886073370 और 9815007682।
7: ब्राइटलैंड सेकेंडरी स्कूल में व्यवस्थापन तथा विज्ञान संकाय का लागि आवेदन खुला गरिएको छ।
8: हो, भर्ना खुल्यो। व्यवसाय, बैंकिंग, उद्यमशीलता, होटल व्यवस्थापन, वित्त, कानून, पर्यटन तथा कर्पोरेट नेतृत्व क्षेत्र में भविष्य निर्माण गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि सुनौलो अवसर।
7: व्यवसाय अध्ययन, लेखाशास्त्र, अर्थशास्त्र, कम्प्युटर विज्ञान, होटल व्यवस्थापन, पर्यटन, वित्त, व्यवसाय गणित र सामान्य कानून।
8: विज्ञान संकाय चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, प्रविधि, अनुसन्धान, स्वास्थ्य विज्ञान, सूचना प्रविधि तथा विज्ञान सम्बन्धी क्षेत्रमा करियर बनाउन चाहने विद्यार्थीहरूका लागि
7: भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित र कम्प्युटर विज्ञान।
8: विद्यार्थीहरूले आफ्नो करियर लक्ष्य अनुसार गणित, जीव विज्ञान वा कम्प्युटर विज्ञान जस्ता विषय संयोजन छनोट गर्न पनि सक्नेछन्।
7: किन रोज्ने ब्राइटल्यान्ड?
8: हो, सबै विषयमा दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकहरू, केस स्टडी तथा परियोजनामूलक अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण,
7: पूर्ण दिवसीय कक्षा सञ्चालन, वित्तीय साक्षरता तथा उद्यमशीलता सिप विकास,
8: आधुनिक विज्ञान, कम्प्युटर विज्ञान तथा होटेल व्यवस्थापन प्रयोगशाला, उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरूसँग कार्यशाला,
7: नेतृत्व तथा व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम, MBBS, BHM, BITM, BBA सीए, एमबीएस तथा अन्य व्यवस्थापन तथा विज्ञान क्षेत्रका लागि करियर परामर्श,
8: उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको सुविधा, अफिस खुल्ने समय बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म, कक्षा सञ्चालन 2083 असार 1 गतेदेखि। थप जानकारीका लागि
7: ब्राइटल्यान्ड सेकेन्डरी स्कुल, पासाङलाम रोड, नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081-532-607-530-602।
0: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो। सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन्, खुसीको खबर कहिले सुनाउने भनेर।
9: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ, तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन।
0: कति अस्पताल धायौँ, कति उपचार गरायौँ, अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
9: होइन, हामीसँग अझै आशा छ। मैले शुभश्री आइबिएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु, जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ।
10: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आइबिएफ क्लिनिक, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
0: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
9: धन्यवाद शुभश्री आइबिएफ, हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
10: थप जानकारीका लागि शुभश्री आइबिएफ क्लिनिक, सोल्टीमोड, काठमाडौँ, फोन नम्बर 98-61-14-16-99।
11: यो कृष्ण सार एफएम
12: 94 मेगाहर्ज, कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: तू अभी तक रेडी नहीं हुई? क्या फायदा, वो तो आ ही नहीं रहा है। तू अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में ऐसे जाएगी? खुश हो जा, वो आ रहा है और तेरे लिए एक सरप्राइज है। तू झूठ बोल रही है।
1: सच्ची?
0: अब मैं दिखाती हूं उसे सरप्राइज क्या होता है, देखती जा।

0: खुल्यो खुल्यो खुल्यो
1: तपाईको आफ्नै शहर कोहलपुरमा टीवीएस शोरूम खुल्यो।
0: स्टाइल, पावर र भरोसा अब एकै ठाउँमा
1: कोहलपुरमै पाइन्छ। टीवीएस का नयाँ बाइक र स्कूटर, दमदार परफर्मेन्स र उत्कृष्ट माइलेज का साथ सेल्स सर्भिस र स्पियर्स, सबै सुविधा एउटै छानामुनि, साथमा फाइनान्सको सुविधा पनि।
0: आजै आउनुहोस् नेपाल अटो पार्ट्स एन्ड सप्लायर्स, कोहलपुर 11 बाँकी।
1: हजुर, नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा। सम्पर्क नम्बर 98125 26 711 र 98 20 18 37 86। नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा।
2: बहिनी, हमार घर तो बढ़िया है, मने पुरान फर्नीचर तो घर के चमक हटाए दी जस लागत है।
3: हाँ तो दीदिया, अब तो घर के यहाँ नया परिवर्तन देहिन का परी जस लागत है। आरामदायी और मॉडर्न कुछ चाही।
2: अच्छा, ऐसा तो चिंता काहे करी हो, स्टार फर्नीचर लैंड में यहाँ तो सब मिलत है।
3: साचू दीदिया, का का मिलत है हुआ?
2: सुनो बहनी, स्टाइलदार सोफा, आरामदायी बेड, आकर्षण डाइनिंग टेबल, टीवी रैक, ऑफिस फर्नीचर, गलीचा कारपेट के साथ है घर सजावे वाला सब सामान चीज एक जगह में मिलत है।
3: और डिजाइन अपनी इच्छा अनुसार बनाई के देते है।
2: काहे न बनाई दी बहनी, अपने चाहे जिस डिजाइन अनुसार भी बनावत है।
3: और मने डिलीवरी और फिटिंग?
2: अरे बहनी, बाके और बर्दिया जिला तक फ्री होम डिलीवरी है। इके साथ फ्री फिटिंग सेवा तो बिल्कुल ही फ्री है।
4: आशा तो अब हमरो घर भी नवा जस बनावे है। स्टार फर्नीचर लैंड से शुरू कीन जाए। हाँ दीदिया,
5: स्टार फर्नीचर लैंड, शिक्षा कार्यालय के सामने, बीपी चौक, नेपालगंज। संपर्क नंबर 98680 73 70 और 98195067 82।
6: यो कृष्ण सार FM
7: 94 मेगाहर्ज, कृष्ण सार जत्ती के तेज़।

0: एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
2: एक्सट्रिम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी